संसारा केह बेद सजा प्रथम संसारा एक रूपा नूप सरूपा रंक पहयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत पुज खान बाहुर रच दीनी कहूं भूल राजा हो बैठा कहूं सिमट पहो संकरया कैठा सिगरी सृष्ट दिखाया चंग पवाद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख ओबार असिख संग्रो दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेच कर औरण काता जे अस तुझ तव सरनी परे तिन के दुष्ट दुख तो है मरे।

संबत सत्रह सहस बने जय अर्ध सहस भुन तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रावारा तीरस्तद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्र पख्याने त्रया चरित्र मंत्री भूप संवाद 405 चरित्र समापत।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

बिघ्न विनाशन सोए पतत पावन भगत वशल कृपा निदान रहमतां दे सागर गुरु गरीब निवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन और पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका सत संगत दिया अमोलक घड़िया दी बख्शिश होई है। संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना अंदर गुरु के वजीरां पासों गुरु जस सुन करके समय और सवासा नू सफलियां कर रहे हा। सलाना समागमां नू मुख रखदियां जो कथा दरबार दी आरंभता होई है आओ गुरमत विचारां दी सांझ पाउण तो पहला नूर हर दर चशम गुरु गोबिंद सिंह रूह हर दर जिसम गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शैन शाह गुरु गोबिंद सिंह तेग दे तनी बचन के बली कलम दे लखारी जुलम दे शिकारी नीले दे शाह असवार खालसा फौजां दे सरदार साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जियां द्वारा बख्श

परम सन्मान जो गुरु की साजी निवाजी गुरु का खास रूप साध संगत जी दीन दुनिया दे रहबर चवर शतर तख्त दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कृपा सदका आप संगतां ने मेरी पीरी दे दिहाड़े नूं मुख रखदिआं होइआं गुरु के पावन दरबार विचों कथा दरबार सरवण कीते हन। समा होया सतगुरु जी दी चलाई होई माण मर्यादा अनुसार गुरबाणी नूं पढ़न सुनन दा आओ स्वासा नूं सफलियां करन हित मन चित बिरतियां नूं एकागर करदे होए धन गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दे चरणा नाल जुड़िए। संगत जी संगत दे चरणा च बेनती है कि थोड़ा जिहा टाइम नाल आपां शुरू करिया करिए। अज आपां कल भी 15 मिनट लेट सी, अज भी 15 मिनट लेट हो गए, सो समाप्ति दा समा ते अपने कोल वधना नहीं, सो इस करके फिर भजा भजाई जी पै जांदी है। संगत दे चरणा च बेनती है पूर्ण पूरे पूरे टाइम ते सारी संगत हाजिर होवे तां जो साध संगत जी जिहड़ी है 5 मिंट च स्टेज साडी आरंभ हो जावे। जदों पूरे 15 मिंट लग जांदे है 10 मिंटां दे नाल बहुत ज्यादा साध संगत जी फिर बाद विच जाके ओ खिचा खिची आला काम बनदा। सो इस करके सारी संगत दे चरणा च बेनती है कि समरे समय सिर पुजन की कृपालता करिया करो। सो गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज जिया की कृपा दे सदका हुण तक आपां 897 अंक तक सतगुरु जी की पावन बाणी पढ़ी सुनी है। सतगुरु सचे पातशाह महाराज कृपा कर रहे हैं 98 ते हांजी 798 अंक तक सतगुरु सचे 898 अंक तक सतगुरु जी की बाणी पढ़ी सुनी है। 898 अंक तो सतगुरु जी की पावन बाणी के शब्द प्रारंभ हो रहे हैं। राम कली हांजी सो गरीब नवाज सचे पातशाह जी की कृपा सदका राम कली महला पंजवा एह लोके सुख पाया नहीं भेटत धर्म राया इथों सतगुरु जी की पावन बाणी प्रारंभ हो रही है। हां जी दर्शन वाहिगुरु हां जी दास की रेण पाए जे कोई नानक माफी चाहना साध संगत जी 897 अंक तो सतगुरु जी का राम कली राग तो 5वें पातशाह जी का शब्द प्रारंभ हो रहा है। राम कली महला पंजवा दर्शन कौ जाइए कुरबान चरण कमल हिरदय धर ध्यान इथों सतगुरु जी का पावन शब्द प्रारंभ हो रहा है। ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ

जमदूत ग्रासियो महाभया, बोलै झूठ कमावै अवरा, त्रिसन न बूझै बहुत हया, असाध रोग

0: राम नाम नार निसबा सुर मै निमख एक और धारै।
1: इथे भी ममे दी दुलावा नाल ही पाठ है, मैं हाहे दी सिहारी दे सहत पाठ नहीं है। राम नाम नार निस, राम नाम नार निस बासुर मैं निमख एक और धारै।

उसार ना बैठा। जे को सत करे सो छीजै, तप कर तप ना होई। जे को नाव लय बदनावी, कल के लखण एई। जिस सिकदारी

0: मन भाए भिखिया सहज विचारी खाए भसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोह सह जम डंड।
1: इथे मोह जिहड़ा पाठ साध संगत दी है उहदी हाहे नूं सियारी नहीं है, पर कुछ रूपां दे विच हाहे दी सियारी दे नाल पाठ छापिया गया है, पर हाहे दी औंकड़ दे नाल पाठ शुद्ध है। उचारण होवेगा मोह, जिवें ज्ञानी जी ने कीता है मोह, पर मोह पाठ दास कोल पोथी विच छपिया है। आप जी पोथियां किताबां ते नोट कर सकदे आ, अपनियां कापियां ते। माया मोह सह जम डंड
0: फूट।

का भाव भागे जम जंदार ना लागे मोहे निर्मल नाम हृदय हर सोहे शब्द विचार भय निरंकारी गुरमत जागे दुरमत परहारी आन दिन जाग रहे लिव लाई जीवन मुक्त गात अंतर पाई अलिप्त गुफा मह रह निरारे तस्कर पंच शब्द संघारे।

0: तत् परोता जग सूता मर आवै जाए बिन गुर शब्द न सोझी पाए अनहद शब्द वज्जै दिन राति अविगत की गत गुरमुख जाति तौ जानी जा शब्द पछानी एको रव रहया निर्बानी सुन समाध सहज मन राता ताज हौ लोभा एको जाता गुर चेले अपना मन मानिया नानक दूजा मेट समानिया राम कली महला पहला।
1: ए अगे वाला जेड़ा शब्द प्रारंभ हो रहा है, धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दा साहा सोधन वास्ते बाबा कल्याण चंद जी ने हरदयाल पुरोहित नूं बुलाया। हरदयाल पुरोहित नूं बुला के सतगुरु जी दे पिता जी कहण लगे कि नानक देव जी दा गुरु नानक देव जी दा विआह दी तरीक जिहड़ी रखनी है। हरदयाल पुरोहित जी ने ज्योतिष दे अनुसार सतगुरु जी नूं चौंकी दे उपर बैठा के ते साहा गिण लगा, कहन तो भाव के केड़ा दिन रखना है, आनंद कारज दा विआह दा दिन केड़ा रखना है। तां सतगुरु जी ने हरदयाल पुरोहित नूं पावन पवित्र उपदेश बख्शिया। गुरु के प्यारे सिखां नूं वी इह सिख्या दित्ती है सतगुरु जी ने कि साहा गणहै ना करहै विचार, साहे उपर एकंकार, कहन तो भाव है कि साहे

0: सुख थीए। कर अपराध सरण हम आया, गुर हर भेटे पुरब कमाया। गुर सरण ना आईए, ब्रह्म ना पाईए। भरम भुलाईए, जन्म मर आईए। जमदर बाधो मरे बिकार, ना हृदय नाम ना शब्द आचार। एक पादे पंडित मिसर कहावह, दुविधा राते महल न पावह। जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मध्य को जन्म जन आपार। एक बुरा भला सच एक, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक। गुरमुख विरली एको जानिया, आवन जाना मेट समाणिया। जिन कह हिरदय एक अंकार, सर्ब गुणी साचा विचार। गुर कै भाणे कर्म कमावे, नानक साचे साच समावे। राम कली महला पहला, हठ निग्रह कर काया छीजे। वर्त तपन कर मन नहीं भीजे, राम नाम सार अवर ना पूजे। गुर सेव मना हर जन संग कीजे।
1: पूजे पाठ थोड़ा जा कस के जिवे ज्ञानी जी ने उचारण कीता, पूजे नहीं कहना, पूजे जिवे उचारण होया।
0: जम जंदार जोहे ना नहीं साके, जम जंदार जोहे नहीं साके। सरपन डस ना सके, हर का रस पीजे रहाओ। वाद पड़े रागी जग पीजे, त्रैगुण बिखिया जन्म मरीजे। राम नाम बिन दुख सहीजे, चाड़स पवन सिंघासन पीजे। न्योली कर्म खट कर्म करीजे, राम नाम बिन बिरथा सास लीजे।

पचह अभिमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावह दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीर्थ भरमस ब्याध न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे।

जियो जल बल जाई सिद्ध साधक केते मुन देवा हठ निग्रह ना त्रिपतावह भेवा शब्द विचार गह गुर सेवा मन तन निर्मल अभिमान अपेवा कर्म मिले पावे सच नाओ तुम शरणागत रहो सुभाओ तुम ते उपजियो भगती भाओ जप जापो गुरमुख हर नाओ हौमै गर्भ जाय मन भीनै झूठ न पावस पाखंड कीनै बिन गुर शब्द नहीं घर बार नानक गुरमुख तत् बीचार राम कली महला पहला ज्यो आया त्यो जावह बौरे ज्यो जन्मे त्यों मरण भया ज्यो रस भोग किए तेता दुख लागै नाम विसार भव जल पया तान तान देखत गर्भ गया कनिक कामनी स्यो हेत वधाए हे कि नाम विसार है भरम गया रहाओ जात सत संजम सील न राख्या प्रेत पिंजर मह काष्ट भया पुन दान इसनान न संजम साध संगत बिन बाद जया लालच लागै नाम बिसारियो आवत जावत जन्म गया जा जम धाए केस गह मारै सुरत नहीं मुख काल गया अहनिस निंदा तात पराई हिरदय नाम न ना सर्ब दया बिन गुर शब्द न गत पत पावह राम नाम बिन नरक गया खिन

0: की छूटे सतगुर सच सखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी घर छाया तरन गगन कल धारी
1: ओ अलग ते हठ अलग साध संगत जी जिवें उचारण किया गया है एवें करना औहठ पाठ इकट्ठा नहीं करना पोथियां दे विच जां सरूपां दे विच इकट्ठा छाप दिता गया है पर उचारण अलग अलग ही करना औहठ हस्त मड़ी मड़ी पाठ जिहड़ा है भारा करना मड़ी घर छाया धरन गगन काल धारी गुरु

0: पाठ पोला उच्चारण करना।
1: न्याओ तिसा का है सद साचा विरले हुक्म मनाई, तेसनो प्राणी सदा त्यावहु जिन गुरमुख।

लोड़ प्रभु है, प्रभुता नहीं है। जब कोई प्रभुता पदार्थ न काम न अपने मन की लोड़ बना लेंदा है, भटकना वध जाती है, क्योंकि वो टिकदा नहीं, वो किधरे भी टिकदा नहीं। मन भटकदा है काल विच, समय विच, गुजरे हुए समय दियां यादां विच भटकदा है। मन नू भटकण वास्ते कोई स्थान नहीं चाहिए, जगह नहीं चाहिए। जगह चाहिए तन नू, दौड़न भजन वास्ते, कम करन वास्ते स्थान चाहिए है तन नू, मन नू नहीं चाहिए। मन ते 4 फुट दी जगह च भी बंदा बैठा है, मन हजारा मील दी वाट तय करेगा, वो समय च भटकदा है, वो वक्त दे च भटकदा है। गुजरे हुए समय दियां यादां दे च भटकेगा। तुसी आखोगे क्यों भटकदा है, यादां दे च क्यों भटकदा है? कुछ मिलिया से बड़ी खुशी मिली सी, मिलके कुछ मन भावदा मिलिया सी, बड़ी खुशी मिली, फिर बिछड़ गया, बड़ी चोट लगी, बड़ा दुख होया। यादां किस दी आउंदियां? दुख सुख दियां। जद मनुख कोई यादां विच बैठा होवे, या सुखां नूं याद कर रहा होवेगा या दुखां नूं, और की याद करदा है, और की याद करदा? बगौर मुताला कर लेना। आप सारे सियाने बैठे हो, कुछ मिलिया सी, कुछ भी मिलिया सी, कोई पदार्थ मिलिया सी, मित्र मिलिया सी, पुत्र मिलिया सी, भरा मिलिया सी, कोई प्रभुता मिली सी, कुछ भी मिलिया सी, मिलके बड़ी खुशी हुई सी, याद आउंदी है, फिर बिछड़ गई। समय दिच जो कुछ भी मिलता है बिछड़दा है, कुछ भी मिलता है। ये जीवन में मिले है बिछड़ेगा, जवानी मिली है बिछड़ेगी, बचपना मिलिया बिछड़ गया। मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना इस समय का स्वभाव है, काल का स्वभाव है। मिलिया से बड़ी खुशी मिली, याद आउंदी है, बिछड़ गया, बड़ी चोट लगी है, बड़ा दुख होया, याद आउंदा है। यादां दुख सुख दियां होंदियां, यादां दा संबंध गुजरे हुए समय नाल हुंदा है। उंज समा इक्को ही है, कदी चक्कर च ना पैना कि समय दे कोई 3 रूप ने। मनुख करके समा दा ए विभाजन हो जांदा है, वंड हो जांदी है। भूत भविष्य वर्तमान असी कह देंदे हां, माजी हाल मुस्तकबिल असी कह देंदे हां। उंज समा इक है, परमात्मा दी दुनिया समा इक है। मेरे करके कुछ जिहड़ा गुजरा होया समय है, वह मेरा भूतकाल है, आने वाला भविष्य है, सामने है वर्तमान है। ये मेरे करके, अगर मैं नहीं हाँ तो समा तो एक ही है। उम्मीद गल पकड़ते जा गई, समय के कोई 3 रूप नहीं, मनुख करके 3 रूप हो जाते हैं। मेरा कुछ गुजरिया हुआ समय, मेरा कुछ आने वाला समय, उन समा एक है। मन चला जाता है गुजरे हुए समय दियां यादां विच, ते यादां विच की आउंदा है? दुख ते सुख। कदी दुखां नूं याद करदा, कदी सुखां नूं। फिर मन चला जांदा है आने वाले समय च, क्यों? आने वाले समय दी चिंता है, हुण जो कुछ मिलिया होया किधरे चला ना जाए, चिंता। पहले तो इस तरह होया, जो मिलिया बिछड़िया, जो मिलिया बिछड़िया, बचपना मिलिया चला गया, जवानी मिली चली गई। जीवन विच मनुख नूं बहुत कुछ मिलता है और जांदा है, पता नहीं कितना कुछ मिले और कितने मिले बिछड़े। बाबा फरीद अपने आप नूं इन समझांदे ने, फरीदा किथे तैडे मां पिया जे नहीं तूं जणिया, कल ते तेरी मां है सी अज कोई नहीं, 5 साल ते पिता है सी अज कोई नहीं, 10 साल पहले मां है सी अज कोई नहीं। फरीदा किथे तेडे मां पे।

वर्णन सके महिमा जो तिहारी, हम ना सिफते कर सकत तुम्हारी। आप ले ओ तुम कथा सुधारी, कहाँ लगे एहो कीट बखाने।

गुरु रूप सत्संग जीओ फते प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उंज ते शरीर दा हर अंग अपने आप विच कारामद है, महान है और उसकी महिमा वर्णन नहीं कीती जा सकती। हर अंग महान है लेकिन फिर भी किसी जगह पे पहुंचना है तो पहले रास्ता दिखाई दे दे। रास्ते का दिखाई देना बड़ा लाजमी है। फिर चलन वास्ते पैर भी होवन। विखाई देंदा है चलन की तौफीक नहीं, रस्ता देखे होया व्यर्थ हो गया। लेकिन मैं अर्ज करा चलन की तौफीक है, रस्ता ते नहीं दिखाई देता। ऐसा मनुख ऐसा त्यास कीता जाता है, समा जरा ज्यादा लग जाएगा, भटकदया पहुंच जाएगा। रह गई गई गल हुण अंतरीव दुनिया दी। परमात्मा नूं जिहड़ा समझना है, जानना है, इह ते रस्ते दा वेखणा है। इस तरह दे जानकार, जानन वाले, रस्ते नूं समझण वाले, इन्हां दी तादाद बथेरी है, घट नहीं है। बड़े ज्ञानी ने इस्लामी दुनिया च भी जो कहते ने खुदा ला शरीक है, ला मकान है, उदा कोई थां टिकाणा नहीं, उदा कोई शरीक नहीं, वो ला महदूद है, उदी कोई सीमा नहीं। इस तरह भारत विच बौद्धी क्या, जैनी क्या, सनातनी क्या, सारे ही कहते बेअंत है, जात पात तो न्यारा है, रंग रूप तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, उदी कोई सीमा नहीं, बेअंत है, बेअंत है। सिख जगत विच भी करीबन करीबन ज्ञानी यही कुछ कहते हैं, बेअंत है, बेअंत है। लेकिन मनुख दा मन बेअंत तो प्रभावित नहीं, असीम है, असीम है, लेकिन मन उस असीम तो प्रभावित नहीं है। कारण सिर्फ रास्ता दिखाई देता है, मंजिल नहीं। जैसे किसी थान ते सी पहुंचना है कि किसी ने रास्ता दस देता या रास्ता दस रहे नाल है तो रास्ता ते दिखाई दे रहा है, जिथे असी पहुंचना है उते नहीं। जगत विच परमात्मा दे रस्ते दे भी बड़े झगड़े ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं। वक वक मंत्रां दा रटन ये रस्ता है। राम जपना, अल्लाह हो जपना, ओम जपना, गोविंद जपना, वाहेगुरु जपना, सोहंग जपना, ओम जपना, ये सब मंत्र रस्ता ने, मार्ग ने। फिर मार्ग दे उते चलन दे अपने अपने ढंग ने। कोई दौड़दा है, कोई आस्ता चलता है, कोई बहुत आस्ता चलता है। तो चलन दे और रस्ते दे इतने झगड़े ने, इतने झगड़े ने, अक्सर मनुख रस्तियां च ही रह जाता है। क्योंकि गल रस्ते दी मंजिल दी ते है नहीं। कई दफा चल चल के मनुख जब थकदा है, टुटदा है ते पहुंचदा नहीं, रस्ते बदलदा भी है, ये भी महसूस करते हैं। क्योंकि मजहब बदलने दे, बदलना, धर्म बदल लेना, शायद उत्थे कोई गल होवे।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ਤਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਤ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਰੀਬਨ 99% ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਦਾਤ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਤੇ ਦਾਤ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਗ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਦਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੁਹਰਾ ਹੀ ਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
कोई समा नहीं कटता, कोई संघर्ष नहीं करता। इस तरह 10,000 इकट्ठ विच मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे एक जगह सो होंदा, फिर 10,000 दे करीब जगह सो होवन जो थोड़े जाग पे ने दाते तो प्रभावित ने, दात तो नहीं, दात ते है जो कुछ है, पता चल गया परिवार एक दात है, बच्चे एक दात ने, धन संपदा एक दात है, जीवन एक दात है, सूरज दी रोशनी सानू दान दिच मिल रही है, वगदी हुई पवन दान है, बहुत कुछ जिस दासी कोई मुल नहीं चुकाया ते मिल जाता है, दाता वो दे रहे हैं। लेकिन 10,000 सत्संगियां दिचों कोई एक कद दाते तो प्रभावित हो गया, एक उसनु जग्यासु कहते हैं, जाग पे है, मेरा सुत्ता होया नहीं, जाग पे है, मेरे एवें गुरुद्वारे नहीं आया, कुछ समझ है, सिर्फ एवें बाणी नहीं पढ़ रहा, कुछ समझ है, सिर्फ एवें ही नहीं जप कर रहा, कुछ समझ है, सिर्फ एवें ही नहीं हाथ विच गुटका ले बैठा, कुछ समझ है, उस जगह आसो। ये आंकड़े बहुत गहरे अनुभवी पुरुषों ने इकट्ठे किए ने, ते मैं थोड़े सामने जो उन्होंने मैं पढ़े है थोड़ी जी समझ आई थोड़े सामने रख रहे हैं। 10,000 निमाजी किसी मस्जिद दे चोवन, 10,000 पूजा पाठ करने वाले किसी मंदिर दे चोवन, 10,000 दे करीब प्रेर करने वाले किसी चर्च दे च बैठे होवन, 10,000 गुरसिख सत्संगी किसी गुरुद्वारे च बैठे होवन, एक जगह सो होंदा, बहुते नहीं होंदे, एक होंदा जो जाग पे है, समझ आ गई, मेरी दात लई ओ हुण गुरुद्वारे नहीं आउंदा, दाते लई आउंदा, श्री दात वास्ते बाणी नहीं पढ़ता, हुण दाते वास्ते पढ़ता, समझ आ गई। इस तरह 10,000 दे करीब अवन पे कोई एक जग्यासु होंदा है, फिर गिनती कर दें 10,000 जग्यासु होवन एक साधु होंदा है, एक साधु होंदा है, जैसे जैसे पहाड़ दे ऊपर चढ़िए ना ते जगह छोटी होंदी जा रही, थल्ले बहुत ज्यादा, जितने जग्यासु ने उतने साधु नहीं ने, 10,000 जग्यासु होवन उन्हां च कोई एक अद साधु होंदा है जो बड़ा तेजी नाल चल पै, मेरा परमात्मा तो प्रभावित ही नहीं होया, परमात्मा की प्राप्ति लई पूरा समा कढ़दा है, पूरा संघर्ष करदा है, पूरी मेहनत करदा है, पूरा जप तप करदा है, मेरा प्रभावित ही नहीं होया, मेरी समझ ही नहीं आई, जिस दी समझ आई है उदी प्राप्ति ले यतन करन लग पे, मेहनत करन लग पे, बड़ी मेहनत करन लग पे, इनु साधु कहंदे। हुण होर सुन लो, 10,000 दे करीब साधु होवन, इन्हां च एक संत आउंदा जो पहुंच गया, एक इस तरह एक करोड़ां च कोई कद बनेगा, कोटन में नानक को नारायण जय जी, कोट मदे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी, करोड़ा च कोई एक, ऐसा क्यों है, मैं दोहरावा, बड़ा बारीक मजमून है परमात्मा, और इस वास्ते बड़ी बारीक अकल चाहिए है, अकल मनुख को मोटी हो गई, हर वक्त संसार का चिंतन करिए, परिवार का चिंतन करिए, कारोबार का चिंतन करिए, सब आकार रखते हैं, मोटे हैं,
अकल मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है। निरंकार का चिंतन ही मनुख की अकल नूं बारीक करता है। साहिब ते कहिंदे ने जब साधना करन विच बैठे ते प्रभु कोले मंग मंगया कर, हार परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। ए प्रभु, विवेकशील बुद्ध दे जो तेनू समझ सके, तेनू समझ सके। तो हुण मैं अर्ज करा, रस्ता वेखण वास्ते अखां चाहीदियां ने, चलण वास्ते पैर चाहीदे ने। ज्ञान अख है, श्रद्धा भावना प्रेम प्यार ए पैर ने। प्यार दे सारे रूप ने, स्नेह प्रेम श्रद्धा भक्ति। प्यार एक रूप दे च नहीं है, इहदे कई रूप ने। संबंध प्यार नाल जुड़दा है, ज्ञान नाल नहीं। किसी की मैनू समझ भी आ जाए किसी मनुख की यह कौन है, संबंध ते नहीं जुड़दा, संबंध ते प्यार नाल जुड़दा। मैनू पता चल जाए फलाना, उहदे नाम धाम का भी पता चल जाए, उहदी शख्सियत का भी पता चल जाए, इहदे नाल कोई संबंध ते नहीं जुड़दा। संबंध प्रेम जोड़दा, प्रेम नेड़े लै जांदा है, ज्ञान नेड़े नहीं ले जाता। देखना तो दूरों भी हो सकता है, दूरों असी चन्न नूं वेख लैंदे आ, देखण दा की है, सूरज नूं वेख लैंदे आ, ग्रह नक्षत्रां नूं वेख लैंदे आ, बड़ी दूर की चीज नूं वेख लैंदे आ। पहुंचने वास्ते तो कोई साधना करनी पएगी ना, उत्थे तक पहुंचने वास्ते तो कुछ यतन करना पएगा ना। प्रेम ही नेड़े ले जाता किसी दे, ज्ञान नेड़े नहीं ले जाता। अगले की कितनी भी समझ पै जाए कि फलाना है फलाना है, उदी सारी जात पात नाम धाम कम सब कुछ का पता चल जाए, जानकारी मिल गई है, दूरी बनी रहती है, पता तो चल गया मनुख कौन है की है, लेकिन दूरी बनी हुई है क्योंकि प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार नेड़े ले जाता है, ज्ञानी उरार ही रह जाते हैं। इतनी मैं अर्ज करा, बड़े बड़े ज्ञानी इस्लामी जगत दे, हिंदू जगत दे, सिख जगत दे, बड़ी सिर खपाई करते रह जाते हैं, यह भी मैं अर्ज करते हैं। ज्ञान की लोड़ है, वेख सके रस्ता, पर वेखण नाल सिर्फ पता चले, संबंध ते कोई नहीं जुड़े, रिश्ता ते नहीं जुड़े, वो ते प्यार नाल जुड़ता है। हुण प्यार दे कुछ रूप मन्ने गए ने, प्यार नूं स्नेह आख्या गया, प्यार नूं प्रेम आख्या गया, प्यार नूं श्रद्धा आख्या गया, प्यार नूं भक्ति आख्या गया। शिखर दा प्यार जो बुलंदियां नूं छूंदा है उसनूं भक्ति कहिंदे ने, निवाण दा प्यार जिसनूं स्नेह कहिंदे ने। इह स्नेह अपने तो छोटियां नाल आउंदा है, बच्चियां नाल हो सकदा, बिना स्नेह तो ते बच्चियां नाल भी संबंध नहीं जुड़ेगा। प्यार दी ए धारा निमाण दी तरफ जा रही है। स्नेह पशुआं दे च भी आउंदा है, कीड़े मकोड़ियां च भी आउंदा है, पंछियां च भी आउंदा है, बल्कि स्नेह किसे किसे पशु च मनुख नालों भी ज्यादा आउंदा है। जैसे बंदर ने, बंदरी दा बच्चा मर भी जाए मुर्दा बच्चे नूं भी सीने नाल लाई रखदी है, सुटदी नहीं, छोड़दी नहीं। ऐसा मैं आगरे विच, हरिद्वार विच, कानपुर विच देख के दंग रह गया, बनारस विच देख के दंग रह गया। है ते बच्चा मुर्दा, सुटदी नहीं पई, अद्धा गल गया, लीरा लीरा हो गया, नहीं सुटदी पई। बंदरी दे अंदर यह स्नेह बहुत बड़ा प्रबल है, मनुख नालों कई गुणा ज्यादा, मनुखी मां नालों कई गुणा ज्यादा। इसी स्नेह नूं मोह कह देंदे ने, घृणा नहीं इस मोह नाल। धन गुरु अमरदास जी महाराज ते कहंदे ने,
कुर्बान कीता तिसे विटो जिन मोह मीठा लाया। हे प्रभु जे किधरे तू मोह च मिठास ना पांदा बच्चे ते पलने ही नहीं सन, ना पशुआ दे ना मनुखां दे, रोंदा रह जाना सी बच्चा, किसने दुध पिलाना सी, तड़प के बिलक बिलक के मर जाने सन बच्चे, कि ना पशुआ ने संभाल करनी सी। सारा दिन दाना लभदी है चिड़ी आके बच्चे दे मुंह च पांदी, ऐसा सब कुछ सने करा रहे हैं। उधर भगत नामदेव जी महाराज ते कहंदे ने मंदिर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाड़ी अले, पंच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी अरे। भावे चरवाहा ग्वाला गौवां नूं बहुत दूर ले गया चराण वास्ते, पर वो बार बार याद कर रही है अपने बछड़े नूं जो पिछे रह गए, उहदा मन उस ते चे खांदी गा पई है, याद बच्चे नूं करदी पई। धन गुरु अर्जन देव जी ने एक होर भी हवाला दिता है, उड़े उड़े आवे सहको सांत इस पाछे बछरे छरिया, बिन कौन खिलावे कौन चुगावे मन में सिमरन करिया। सिमरन तो मुराद याद है, कूंज अपने बच्चिया नू वालबन अक्तूबर दे महीने विच पहाड़ा ते छड आउंदी है, ये पहाड़ी पंछी है बर्फानी इलाके दा, जैसे नवी बर्फ पैनी शुरू हो जाती है कूंजा पहाड़ा नू छड़ के मैदानी इलाके च आ जांदियां, बच्चिया नू उत्थे ही छड आईयां, जो अक्सर सितंबर अक्तूबर विच ही आउंदे ने। वड्डे वड्डे पहाड़ा दे टीलियां दे थले उन्हां नू छोड़ आउंदियां ने, बर्फ पैनी शुरू हो जाती है रिजक लभदा ने। उड़े उड़े आवे सहको सां तिस पाछे बछरे छरिया, सैकड़े को एक को दो मील दा बहु हजारा मील आ जांदियां, दूर आ जांदियां। हिमालिया दा ये पंछी है मैदानी इलाकियां च आ जांदा है। उड़े उड़े आवे सहको सां तिस पाछे बछरे छरिया, तिन कौन खिलावे कौन चुगावे मन में सिमरन करे। उन्हां बच्चियां नूं हुण कौन खिलावे कौन चुगावे, मां ते है कोई नहीं, ते आ गई है छोड़ के आ गई है। फिर वो पलदे किस तरह ने, वड्डे किस तरह आउंदे ने, मन में सिमरन करिया कि परमात्मा का सिमरन कीता है, मनुखी बच्चे नहीं करदे ते कूंज दे बच्चे ने की करना है। क्या कूंज ने परमात्मा का सिमरन किया, इतनी तौफीक ते मनुख दे च भी नहीं है, कूंज कितों करेगी। फिर सतगुरु जो ये कह रहे ने मन में सिमरन करिया, सिमरन परमात्मा का नहीं फिर किसका, इनू गुरबाणी खोल दी, कई थां ते गुरबाणी दे अर्थ गुरबाणी कर दी है। चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे, दूसरा शब्द चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे जैसे बछरे कूंज मन माया ममतारे। कूंज जद मैदानी इलाकों च आ जाती है दाणा चुग दिए बच्चे नू याद कर दिए, फिर चुग दिए याद कर दिए, दाने चुगदी जा रही है याद करदी जा रही है, याद विच इतनी गहरी लीन हो जाती है भूल जाती है मैं याद कर रही हूं, ऐसा प्रतीत होने लग पैंदा बच्चा ही चुग रहा है, मैं नहीं चुग रही। इन्हू कहिंदे ने ध्याता मिट गया, ध्यान मिट गया, देह रह गई। जैसे पालकी का गुंबद है मैं इन्हू वेखा इहदे च ध्यान जोड़ा तो मैं ते ध्याता, ते जिस दिच मैं ध्यान जोड़ रहा वो ध्येय विचकार ते ध्यान है, पर ध्यान दिच प्यार है, ध्यान दिच याद है,
ध्यान विच उमंग है, ध्यान विच प्यार है, इतना लीन होके मैं देख रहा तो कहने ध्याता मिट जाएगा, ध्यान मिट जाएगा, देह रह जाएगी, देह रह जाएगी। कूंज इतना ध्यान पूर्वक इतना स्मृति दे नाल दाने चुगदी है, वो भूल जाती है मैं चुग रही है, बच्चा चुग रहा है, बस इस नाल वो बच्चे पल रहे हैं। विज्ञान इस गल नूं ते तस्लीम करदा पिया कि विचार

या इलाही ई दिल मरा शौक दे दर गलो अज बंद गेरा तौक दे। मुगल काल विच जिहड़े गुलाम बेचे जांदे सन, जिहड़े मनुख बेचे जांदे सन, उन्हां दे गल विच इक पटा पा दिता जांदा सी, जिवें कुत्ते दे गल विच पांदे ने। उस पटे नूं तौक कहिंदे सन, तौक कहिंदे सन, बेदे गले विच तौक पिया होया। अकबर दे समय कितने तौक बनाने बड़े औखे, क्योंकि लखां दी फौज उसनू रखनी पई सी, सारे हिंदुस्तान दा बादशाह हो गया सी। तो पता की करदा सी, इत्थे मोंडे ते दाग ला देंदा सी, जिवें पशुआं नू दाग लाए जांदे ने अग नाल। कबीर ने उसका जिक्र भी किया, दागे होए सो रण में जूझे, बिन दागे भग जाई। दाग दिते जांदे सन ते दागे होए नू देख के कह दिता जांदा सी, गुलाम है, बिके होया गुलाम। उस तो पहले गले दे तौक पा दिता जांदा सी, पटा पा दिता जांदा सी, गुलाम है, बिकिया होया, किसी का खरीदया होया। इतनी ये आम वबा सी, इतनी ये आम प्रथा सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाव सुभाव। हे प्रभु, मैं तेरा खरीदया होया गुलाम, मैं तेरा गुलाम। लाला गुलाम नू कहिंदे परशियन देच, लाले दे अर्थ ने गुलाम। भारत नू जद गुलाम कीता तो अफगानी लोगों ने भारतीयों नू लाला जी कहना शुरू कीता, लाला लाला लाला, गुलाम गुलाम गुलाम। उदों ते उन्होंने गुलाम कहना शुरू कीता, क्योंकि गुलाम बना लिया सी। और गुलामी इतनी कबूल हो गई, इतनी कबूल हो गई, हूँ अपने आप नूं लाला जी कही जाने, सारे लाला जी लाला। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, मुल खरीदी लाला गोला, ए प्रभु मैं तेरा खरीदे होया, तेरा मुल खरीदे होया गुलाम। बड़ा मैं भागा वाला तेरा गुलाम, किसे होर दा नहीं, तेरा गुलाम। कहो कबीर गुलाम घर का, जे आए भावे मार, भगत कबीर। हे प्रभु तेरी मर्जी, असी तेरे गुलाम, तेरे गुलाम। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सवागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जितला आया तितलागा। असी ते गुरु दी दुकान ते अपने आप नु वेच दिता है, सतगुरु ने कहने वेच दिता, खरीदे गए गुलाम। भाई साहब भाई नंद लाल कहिंदे ने, या इलाही ई दिल मरा शौक दे, ऐ मेरे इलाही ऐ मेरे गुरु, देना है ते शौक दे, श्रद्धा दे, प्यार दे। या इलाही ई दिल मरा शौक दे, दर गलो अज बंद गेरा तौक दे। मेरे गले विच बंदगी दा पट्टा पा दे, गुलाम बना दे। दर गलू अज बंद गेरा तौक दे। अगां चल के हथ जोड़ के भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे। ओ अखां दे जिहड़ियां परमात्मा नू वेख सकदियां, ऐ ते मेरे कोल हैगियां ने, ये ते जन्म तो मिलियां ने। ओ अख जिहदे नाल परमात्मा मिलदा दिखाई देंदा है, वो जीवन तो मिलती है, साधना तो मिलती है, तपस्या तो मिलती है, भगती तो मिलती है, उन्हें नहीं मिलती, ये जन्म तो मिलिया। इन्हां दी ते असी कोई कीमत नहीं चुकाई, इस वास्ते मनुख इन्हें अखां दी इतनी कदर भी नहीं करता। कहिंदे ने मनुख हत्थां नूं भी साफ रखता है, पैरां नूं भी साफ रखता है, अखां नूं ते मैला रखता है, नजरां ते मैलियां आउंदियां ने। अखां की इतनी परवाह नहीं करता कि अखां इतनियां मैलियां, और अखां की मैल बड़ी दूर तक जाती है। अखां की मैल सिर्फ मनोविज्ञानक या थोड़े जिहा संत भगतां नूं दिखाई देती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने देख लिया सी, ये जो सारा दिन पानी पिलांदा है, सेवा करता है, ये सेवक नहीं है, भगत नहीं है, ठग है। यदि अखां दस रही सज्जन ठग सिर्फ

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर्व जिया आपे पतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: इसदे वृथा कोई ना है
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभ आपे आप
1: आपन किया कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचे कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: गत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह है
0: तब की जोत सगल घट सो है
1: धनवंता होए क्या को गर्भ है
0: जा सब कुछ तिसका दिया दर्प है
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहता वे
1: देखो होए वह दातार
0: जिस देन हार जाने का वार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थमे थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने असथमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़त रहे
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे
1: तिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख काहे बिल लाई है
0: गुर लिखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग दूत सह चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: ला काहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: लपट रहो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माहे
0: नानक पद से ती कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: साजिब मान लेहो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संता संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जिंजाल
1: धन धन कह सब कोई
0: मुखो जलहर दरगह सोए
1: एहो व्यापार बिरला व्यापार है
0: नानक ताकै सतबर हार है
1: चरण साध के धोए धोए पियो
0: अर्प साध को अपना जियो
1: साध की धूर करो इशनान
0: साध ऊपर जाइया कुर्बान
1: साध सेवा वट भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अनक बिगन ते साधु राख है
0: हर गुण गाय अमर तरस चख है
1: ओट गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जी वादन हार
0: उखे कौ दे बते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरब लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिसका करना है जोग
0: जिस बिन दूसर हवा न होग
1: जप जा सदा सदा दिन रहनी
0: शक्ति उच निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाके मन को की प्रतीत
0: जिस दिन आवे हर प्रभु चीत
1: भक्त भक्त सुनिया तिह लोए
0: जाके हृदय एको होए
1: सच करनी सकता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट साचा आकार
0: सच पर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सोजन सच समाता श्लोक
1: रूप नरेख नरंग किछ त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न
0: सब जाए नानका जिस होए सो प्रसन्न अष्टपदी
1: अवनासी ब्रह्म मन मह राख
0: मानो की तू प्रीत त्याग
1: तेसे परे नाहीं किछ होए
0: सब निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा ध्यान दयाल बख्शंद
1: साथ तेरे की चरनी पाओ
0: नानक कै मन हे नराओ
1: मनसा पूर्ण सरना जोग
0: कर पाया सोई हो
1: हरन भरन जा का नेत्र फोर
0: इसका मंत्र न जाने होर
1: हंद रूप मंगल सद जा कै
0: सर्व थोक सुनिए करता कै
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: अपमत पीसर कृष्ण मह भोगी
1: त्याई त्याई भक्ता सुख पाया
0: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत नाहे
0: सगल देव हार अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: देह गुण में जाको परमाई
0: जन्म रेफरे आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक।

प्रेत देवे सो धर्मे, नमो रोग हरता नमो राग रूपे, नमो साह साह नमो पूप पूपे, नमो दान दाने नमो मान माने, नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानं, नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे।

चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र परथी स अधि स अदृ स अकृ स भगवती छंत है प्रसाद कथते क्या छिज दिस क्या भिज पिस क्या गंज करम क्या भंज भरम क्या भिज लोक क्या दित सो क्या बधूत बरन क्या बिभूत करन क्या राजंग प्रभा है क्या धर्मंग तुजा है क्या शोक बरन के सर्वा भरन के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्म

के सर्वत्र गावन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के

राजा निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, भर भूत प्रभा है, सुजूत सदा है, सदैव स्वरूप है, भेदी अनूप है, समस्तोपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तल सलाम है, सदैव काम है, दरबाद स्वरूप है, गाद है, अनूप है, ओंकार रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सो सर्वानुरागे सो सर्वानुरागे त्रिभूत स्वरूप है, अछेज है, अछूत है, कनर्कं प्रणास है, पृथ्वी अल प्रवास है।

गंग भूते परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकामे त्रिपंगी त्रकामे।

जे आलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तल परना में समस्तल परना से अगंजुल आना में समस्तल निवास इंद्र कामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल को निंदा समस्तल निवासी आ जाय बेबिपूते गजाय बगनी में हरियंग करियंग करिमल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र

रे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बेद नैवत शीस न जात बिचारे एत भय तो का भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदांग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख भवान के भूपत कौन गना नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम

दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पढ़ पढ़ की जाने।

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करावरण कहता जिया सतुजत अवसर नहीं परे तिनके दुष्ट दुख तो मरे पुरुष जावन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे।

संबत 17 सहस पण जय अर्ध सहस भुवन तीन कह जय पा द्रव सुधी अष्टमी रावारा तीरस्त द्रव ग्रंथ सुधा रस वहीया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत

सेव संगत आप पाए क्या करता प्यो कुंभरताए हुकुम बरताए आप वेख गुरमुख सब बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन बसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक सस्यो लेवलाए कह नानक आप करता प्यो हुकुम बुझाए सिमरत सा

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਵਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

कदी मैं उन्होंने मारा कदी वह मैनू पछाड़न। लड़ाई इतनी लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई, खुदा रुस के चला गया, मेरा ए जन्म भी बर्बाद गया। इसे नू कबीर कहते कहत कबीर ए पंच को झगरो झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांधिया मैं राम रमत सुख पाया। सारी जिंदगी झगड़ने लग गए, झगड़न दे च रोज हार होंदी है, रोज मनुख कदी लोभ दे हथों हारदा कदी क्रोध दे हथों कदी काम दे हथों कदी मोह दे हथों कदी लोभ दे हथों रोज हारदा है। कदी ईर्षा हरा देंदी है, कदी निंदा हरा देंदी है, कदी झूठ हरा देंदा है, कदी बेईमानी हरा देंदी है। रोज असी हारदे हैं, गुस्साखी माफ मनुख दी जित नहीं आउंदी। कहत कबीरे पंच को झगरो झगरत जन्म गवाया। ये फकीर उस नजम दे चरौंदा है, खुदा बड़े तरलिया नाल तैनू लिआंदा सी, कितने जन्मां दे मेरे तरले सन, तू मन भी गया पर मैं की करां, मैं तेरे लिए जगह नहीं बना सकया तेरे बैठण लई। कई दफा कईआं नूं रस मिल जांदा है, गवाह बैठ जांदा है। कई दफा मैं देखे कई ऐसे अव्यासी जिन्हां नूं झलकां मिलियां ने गवाह बैठ जांदे, सांभ नहीं सकदे, सिंघासन दे हिरदे दी जगह नहीं आउंदी। खैर ये अनुभव थोड़े सामने मैं बयान करा, मूल गल थोड़े सामने जो है मैं रखा। तन दा घर कबर है, मन दा घर खुदा है। तन शमशान तक पहुंचे उस तो पहले मन भगवान तक पहुंच जाए, यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवण जाण रहे मिले सादा। तो हुण भगवान तक पहुंचना की है, मैं अर्ज करा जिस दरवाजे तो असी आए हैं ना, साड़ी वापसी उसे दरवाजे तो होवेगी। जित दुआरे उबरे तिथे लेओ उबार। ए प्रभु जिथों साडा उबार होया है, आवना होया है, साड़ी वापसी उथों करा। वो दरवाजा केड़ा है? सो दर कहा सो घर कहा, जित बै सर्व संभाले जित दर वसे, कवन दर कहिए दरा भीतर दर कमन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे। सिर्फ दो मिनट मैं आप जी दे लवां। महाराज की बाणी कहती है धुंध ही धुंध सी, कुछ भी नहीं सी, अरबद नरबद धुंधू कारा, धुंध ही धुंध सी, और धुंध करके अंधेरा ही अंधेरा सी पूरे ब्रह्मंड दे। ब्रह्मंड की आखिए जिथे तक है, जो कुछ है अंत ते है नहीं, बस अंधेरा ही अंधेरा सी। अरबद नरबद धुंधू कारा, धरण न गगना हुक्म अपारा। ये धरती नहीं सी, ये गगन भी नहीं सी। धरण न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद न सूरज, सुने सुन रहा ए सूरज भी नहीं सी, चंद्रमा भी नहीं सी, ए तारे भी नहीं सन, ग्रह नक्षत्र भी नहीं सी, ए धरती भी नहीं सी, ए आसमान भी नहीं सी, ए दिन भी नहीं सी, रात भी नहीं सी, धुंध सी, धुंध सी। ए कितने चिर तक धुंध रही, सनातन मिथ्यास। किधरे किधरे उदाहरण पुराणा दे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च मिलदे ने, उन्हों अगे कर देन बे पुराण इस तरह कहंदे ने, अरबद नरबद धुंधू कारा, इहदे संबंध च कहंदे ने 36 युग वरते गुबारे। चार चार युगां नूं 36 दफा पलटा के गिणती करिए तो इतने समय तक धुंध ही धुंध सी। ते समा ते है नहीं सही, जो नापन समा ते हुंदा दिन करके रात करके, ये ते है नहीं सी। हुण फिर सुनना गुरु नानक दे बोल, पहले पातशाह जी दे बोल ने, अरबद नरबद धुंधू कारा, धारण ना गगना हुक्म अपारा। ये धरती नहीं सी, ये आसमान भी नहीं सी, ना दिन रहन चंद ना सूरज, सुने सुन रहा, ये चंद्रमा भी नहीं सी, सूरज भी नहीं सी, इस वास्ते दिन भी नहीं सी, रात भी नहीं सी, ग्रह नक्षत्र तारे सियारे कुछ भी नहीं सन, सुनने सुन रहा सनाटा ही सनाटा सी, सुनने सुन सी।

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीते। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होयां थक जावां, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी पटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना

करनी चाहना कि एक शब्द है प्रेमा भगती, जा यूं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम ना लिव ला के रब दी भगती की। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी कोई शक्ति है जेड़ी खार एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असि आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं इथों तक कि जमीन दे विच पैदा हुई फसल, जमीन दे विच पैदा हुए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा हुए रुख, परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती हुई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंदा, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुभाई। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा है ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी उहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। उह किहड़ी ताकत है, उह किहड़ी मिकनातीस शक्ति है कि जिहड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम, भाई साहिब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक, के गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने, चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनां दी दूरी है। ना ता चकोर नूं किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनूं सिखाया कि आओ देख रात नूं चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नूं एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती, प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नूं किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच पैदा होए चंद्रमा नूं देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालांकि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई वारी चंद्रमा नूं देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक उहनूं नजर टिका के देख दीए, चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करता है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी का ते उन्हें ये नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लतां नूं अपने जिस्म नूं कमाना है, उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नूं उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नूं सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नूं ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हूं अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नूं झुका के अपनी पिठ ते ला लैंदी है ते कई बारी